0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो ले।

इसराइली हमले में शहीद थे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अब खामना शहीद आयतुल्लाह खामनाई सिर कतर ओमान मुख्तलिफ़ मुल्कनि जे साला सतई वफ़दनि चीन आज़रबाईजान इराक बंग्लादेश समेत सौ खां वधीक मुल्कनि जा आला सतई वफ़दनि जी तहरान आमद ईरानी हुकूमत सरबराह खामनाई जी आख़िरी रस्म छिरकनाई कई वेंदे मशहद

0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी आख़िरी रस्म में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, स्पीकर अयाज़ सादिक, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि जी शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी आख़िरी रस्म पाकिस्तानी पहुची शहीद आयतुल्लाह खामनाई जे मड़ ते फातिह पढ़ी ऐं दुआ बि घुरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि ईरानी सदर ऐं ॿी क़यादत सां बि मुलाक़ात कई। शहीद सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मुनि ते अमरीकी ऐं इसराइली हमले जे सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान। ईरानी फ़ौज जो सरबराह खामनाई जो अमरीका ऐं इसराइल खां पलांद वरितो वेंदो। कालीबाब चयो आहे त अमरीका खे आबनाए हुर्म्स में मुदाख़लत न करण ॾिनी वेंदी। इसराइल अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि दौरान ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराची ऐं बाकिर कालीबाब अमरीकी वॉशिंगटन पोस्ट ऐं न्यूयॉर्क टाइम्स पंहिंजे रिपोर्ट्स में ॿुधायो आहे त अमरीका पारां इसराइली मंशा उभर जे राची ऐं इसराइली रिथाबंदीअ जो मक़सदु अमरीका ऐं ईरान विच में जंग बंदी ॻाल्हियुनि खे रोकणो हो। भारत समूरे खेतान में पेश करे रहियो आहे। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ीक़तूं तस्लीम करण लाइ तयार न आहे। भारत पाण खे वकर में खिते ते पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करण जी कोशिश करे रहियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ईरान मुलाक़ात कंदो। खिते जे सूरत हाल बितरफ़े लाॻारीअ वारनि मनसूबनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ज़ोन आईटी ऐं निजकारीअ समेत ॿियनि शोबनि बाबति बिज़नेस कॉन्फ्रेंस खे पिणु ख़िताब कंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFR KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर है हत हाशमी।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا, ٹی ڈور سے بندا ہوا,
1: جی ایف ایم ورک.

0: ये है आपकी आवाज
1: 91.6 इट्स ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: इसराइली हमले में शहीद फिल्म लीडर आयतुल्लाह शिबा थी वही खामनाई के मड के रस्मन के अदायगी लाया के मुक्त ही भाई जान इराक में सौ का मुल्क जहा आला सतही वफदन की तहरान अहमद हुकूमत फौजी सरबराहन भी शहीद आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रस्म में शिरकत कई आयतुल्लाह खामनाई के भेटा पेश तहरान की सिक्योरिटी सख्त शहीद नमाज अज तहरान मड़ 9 जुलाई 30 मां

शहीद आयतुल्लाह क्रिरसन में शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल, पीपल्स पार्टी चेयरमैन जरदार वजीर सैयद मुरान जे मस्जिद में पहुंचे, दुआ भी घुरी। वजीर आजम शहबाज, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ए बियन ईरानी सदर ए भी क्यादत सां ईरानी फौज जो शहीद सुप्रीम लीडर के आखिरी रस्मों से अमरीकी इसराइली हमले के सूरत में भरपूर जवाब देने जो ऐलान। फौज जो सरबराह है तो शहीद आयतुल्लाह खामनाई जो अमरीका ए इसराइल का पलांद वरतो वेंदो। मोहम्मद बाकर कालीबाब है तो अमरीका के आबनाए हुरम्स में मुदाखलत न करनी वेंदी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटिया, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अपना शहर की आवाज।
3: हर दिन हर पहर एच नेटवर्क की आवाज।
4: मेहरान की गुंदा हूँ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे
1: भरोसा रिश्ता भरोसा।

तोड़े जानवरनि जे पीअण लाइ पाणी नाहे, कोर्ट जो नोटिस वठी पाणी फराहम कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो सिलसिलो जारी। शिकारपुर में टे ॾींहं अॻु क़तल थियल नौजवान जो केस दाखिल, ॿ जवाबदार गिरफ़्तार, ॾोह जो एतराफ़। न्यू फौजदारी थानूल वसीम शेख जे भाउ ते केस में फराज बिरोही खे ॻण आहे त वसे ज़ाती रंजिश सबबि क़तल कयो वियो। जवाबदारनि ॾोह जो एतराफ़ कयो आहे। रोड़ी में मातमी जलूस दौरान वसीम शेख ऐं जवाबदार पंहिंजे साथी वसीम शेख खे

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
4: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इस्तेमाल किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: मुझे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेस्ट हाउस। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे अस्करी बैंक
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना आवाज
1: ट्वेल्व पी एम दिस
2: अब आप सुनेंगे नेट KTN न्यूज़।

0: शहीद आहे तुला खामराय जे आख़िरी रस्म लाइ मरी रहियो आहे। लीडर जे आख़िरी रस्म लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी। जंग बाद हालतूं तब्दील थी चुकियूं आहिनि। अमेरिका खे हक़ीक़तूं तस्लीम करणियूं पवंदियूं। तहरान में अज़बुक हम मुनसिब सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हाईंदे मोहम्मद बाक़िर कालेबाफ चयो आहे त आबन हरमुन ईरान ऐं उमान खे गॾियल इंतज़ाम जा बहितर नतीजा निकरंदा, बहितर बणाईंदा। फ्रांस आबन हरमुन मां बारूदी सिरंगूं हटाइण लाइ माइनस हेडनेट्स मुक़ररु करणु छॾिया। फ्रांसीसी सदर चयो आहे त फ्रांस जा माइनर हंटर्स इत्यादिनि सां गॾु आबना हरमुंड्स मां बारूदी सिरंगूं साफ़ कंदा बहाली लार आहे। में पाणीअ खोट इख़्तियार मिशार में पाणीअ जी शदी ऐं ॿियनि शाखनि में पाणी छॾण जो मुतालबो। जाम नवाज़ अली में माइनर जे पुछड़ी जे आबादगारनि जो पाणीअ खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। पाणी फराहम करण जो मुतालबो। ऐं सेवण वेझो लकी शाह सदर में रेलवे इंतज़ामिया पारां घर ढाहिण जी कोशिश ख़िलाफ़ माछी बिरादरी जो मुज़ाहिरो। मुतासिरन रेलवे इंतज़ाम बीहायो। मुतासिरन जो चवणु आहे त सालनि खां आबाद आहियूं, इंतज़ामिया ज़बरदस्ती घर ढाहिण चाहे थी, घर बचाए इंसाफ़ कयो वञे।
1: हर बहर ज़िंदगी की लहर।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर हरी और मावाद
1: GFM 91.6
2: चेक इस
3: हबीब भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: जंग बाद हाल तो अमेरिका के हकीकतों तस्लीम कर तेहरान में अजबक कहाईंदे मोहम्मद बाकर कहवायत ईरान ए ओमान जाम जा बेहतर ट्रांजिट के वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल खिते करे वजीर ख्वाजा आसिफ चहवायत पाकिस्तान गुजरियल बिन सालन दौरान वड़ियों कामयाबियों माणियों पान का वड़ी दुश्मन के शिकस्त भी माणी पाकिस्तान दुनिया आपातकार जो कौमी शाहरा से धरणो ठियों आज लोअर माइंड जो पुछड़ी कोर्ट खिलाफ मुजाहिरो धरणो एहतजाज आबाद पानी की कोर्ट खत्म करण जो मुतालबो कयो। खेपरो के अछड़े थर में नामालूम शख्स जो लाश हथ धनारन की इतला से पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस मौजूब लाश एक ढीह पुरानो है। वे जो लखलाब माशी का आबाद आयो इंतजामिया जबरदस्ती घर डायण चाहे थी घर ऐं बाड्रा में महांगाई ऐं मुसाफ़िर गाॾियुनि जे किरायनि जो पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघ घटिजण बावजूदि ट्रांसपोर्टर्स बि भाउ कई हुकूमत नोटिस वठे महांगाई ते ज़ाब्तो आणे।
4: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहां वहां जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम में खूबसूरती की बातें होने वाली हैं। तो बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, तमाम से लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं, तो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप तमाम तो लोग जरा जो भी हमारे साथ मौजूद है, जरा अपनी हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत कैसे ही आप उम्मीद बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां

शागाल का रसीद हो जो आज मुझे वाइट एशियन जी आ रहा है वाइट प्रोडक्ट्स के तावन से आपके साथ जितने भी लोग वहाँ को वेलकम एंड खुश आमदीद और साथ ही साथ प्रोग्राम आप और ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ने आप लोगों से मैं चाल क्या पूछने वाली प्रोग्राम के सवाल तो आज मेरा बड़ा सवाल होगा हमारी जिंदगी में नाम बहुत सारी ऐसी चीज होते हैं बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें ये लगता है बहुत ज्यादा अहमियत वाले हैं कि आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी कीमती क्या है इसी तरह है कि आज

आप मुझे बताने वाले हैं कि आपको क्या जिंदगी में सबसे कीमती क्या है, जो आपको लगता है कि क्या कीमती है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद होना चाहते हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और 81 पर अगर मुझे फेसबुक पर 0.8 हमारा जाएगा, उसके ऊपर आपको हमारे प्रोग्राम एंड स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए, सबको बताइए कि व्हाइट स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट करते जा रहे हैं खूबसूरती। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जरूरी है, तो इसलिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को क्या तरह की कार फॉलो कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लिया है कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में क्या चीज सबसे ज्यादा अहम है, जरूरी है। और कहा जाए तो बहुत ज्यादा कीमती भी। और इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं जी, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, आपको वेलकम एंड खुशामदी। और साथ ही साथ आप डायल करते रहिए जनाब 03-1579-0595-0315-79-595। बिल्कुल जी, ये नंबर तव्हां डायल कंदा त तव्हां जे कहिड़ी बि जनरल स्टोर ते, तव्हां जे ॻोठ में, तव्हां जे सिटी में व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि, ई सभु अवेलेबल थी वेंदा। ओके जी, सो अवेलेबल नंबर तव्हां लाजमी टॉपिक खे फॉलो कयो था, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर खोसो में सुन रही है बलूचिस्तान से, खुशामदीद। कहते इंसान दूसरों के दिए हुए जख्म तो उंगलियों पर गिनता है, मगर जब अपनी बारी आए तो हिसाब की पूरी किताब ही गायब कर देता है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात। और एम हासिल नहीं होता, काश तो किसी का अगर रह ही मिल गया। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून। और फहीम कहते हैं आज सॉन्ग सुनाइएगा। ओके, मां कोशिश कयां थी तव्हांजो गानो हलाईंदासीं। और अनवर भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अनवर भाई, खुशबाश है आपको, वेलकम कहा जाता है। चाचा खाली चुनी जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, फैंटास्टिक आज है सदरा मुस्कान, हेलो चाचा। और अंसारी कहते हैं, अंसारी साहब जाने इस दिल का हाल क्या होगा, भाई अधिका क्या नहीं, ओके डन हो गया। और किशोर भाई आ चुके हैं, हेलो भाई, अदा खुश आयो, चाक चवा भला आयो, तवा जो अदो भी खुश आई गाल कर। ॿी ॻाल्हि इहा की नासीं त ॾियो हाल अहिवाल, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स किथे पहुता, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स किथे पहुता, लॻाइण स्टार्ट कयो कोन। और मुलाई मुझे खुशामदीद जी, आपको वेलकम कहा जाता है, आपने दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हिदायतुल्लाह अहमदानी कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, आई एम बीमार, बड़ा वाला बुखार और जुकाम हो गया है कल से, ये सॉन्ग तो सुनाना। चलें जी, गाना बिल्कुल आपको सुनाते हैं। और उसके अलावा अनवर भाई कहते हैं, जबरदस्त कसीदो, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और उसके अलावा मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद ही, थैंक यू। अनवर भाई कहते हैं कि वफ़ा जी रात हलंदड़ हमेशा थकजी पवंदा, सौदागरनि जे शहर में सच्चा माण्हू हारजी पवंदा, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। और उदास लड़की हमारे साथ मौजूद है, हमारी प्यारी निदड़ी, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम अदर, कहती हैं कैसी हो प्यारी, वो भी वेलकम कहा जाता है। और जाकिर हुसैन कोरी हमारे साथ, गोठ करम खान नजामानी हाला न्यू मटियारी जिले का, ओके अली कोरी, मुश्ताक अहमद निजामानी, अल्लाह बख्श लाखो जवाब माँ आई पी, ओके जी जबरदस्त। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक माई फैमिली, और मुलाजिम भाई कहते हैं लाइफ। उन खां अलावा मुजाहिद बोजार कहते सिडू जी, हो सके तो एक सॉन्ग प्ले कीजिएगा, मां कोशिश कयां थी तव्हां गाना पंहिंजा लिखंदा वञो, जंहिंजा हली सघिया उहे हलाए छॾींदासीं, लिस्ट में लॻाए छॾींदासीं। और चाचा ख़ालिद कहते टॉपिक रिपीटेड प्लीज, मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछा है कि आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे कीमती क्या है, बस ऐसा कह लें, चीज बोलूंगी तो फिर लोग इधर उधर की चीजें बोलेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में सबसे कीमती क्या है। और हिदायतुल्लाह कहते हैं, अच्छा निदड़ी कहती है कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हें मेरा पता है मेरी लाइफ कैसी है। ये तो ठीक बात है, वैसे कोई बात नहीं जी, इतनी उदासियां भी अच्छी नहीं होती। वैसे कई मरतबा देखा जाए ना, तो इंसान अगर ज्यादा उदास रहता है ना, तो उसके ऊपर जो ना वो नेगेटिविटी जो है ना वो हावी होना है स्टार्ट। कोशिश किया करेंगे खुद को पॉजिटिव रखें, और दो तना हर इंसान आपको खुश नजर आ रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, वो खुश होगा, नहीं जी उसकी लाइफ में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो कोशिश किया करें कि अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारे और खुश रहने की कोशिश किया करें। प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ, फ्रॉम अहमद अबास, प्लीज प्लीज
سانگ ابھی سانس انڈین گانا فرمائش کر دیا, کیا بات ہے جی. تو کفایت اللہ ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ کے تمام بھائی جوائن کر رہا. صدرہ مسکان انتہ سودا کر بیٹھے سنگر ذیشان روکڑی ڈیڈیکیٹ پر بروہی ادا وفا آپ. اوکے جی, تمام بھائیوں کو خوش آمدید, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو

0: साथ फेस बुक पर मौजूद है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आपकी लाइफ में सबसे कीमती क्या है, और साथ साथ ये भी बताइए कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जो स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कहाँ से हमारे साथ मौजूद है, कौन कौन लोग हमें सुन रहे हैं, जल्दी से बताइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और टाइम आ चुका है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और मेरा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।
1: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज, तहजीब सकाफत से सजी,
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
3: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream, कुदरती जिजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। Heme Diamond Glow Bleach Cream।
5: अब आपकी खूबसूरती

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेटा धूप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं जीएफएम 80 की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से 8 बजे
1: क्योंकि
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
5: और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो साथ साथ टॉपिक को भी फॉलो करते जाइए। और मैंने आज आप लोगों से सवाल ही पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में सबसे कीमती क्या है, आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती तो भाईजान ये चीज है, और मुझे बताइए वो क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस हैं, बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन साथ साथ आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई मतलब ऐसा होता है ना, कहते हैं कि भाई आधी जो जानकारी होती है, आधी जो नॉलेज होती है वो नुकसानदायक होती है। अगर आपके पास किसी भी चीज के लिए नॉलेज नहीं है, आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो वो चीज आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को बताएंगे कि ना सिर्फ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स है, बल्कि आपकी खूबसूरती का ख्याल भी रखने वाले प्रोडक्ट्स है। वो कैसे जनाब? वो ऐसे कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं। हर तरह से वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हैं जनाब, आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते साथ ही इनको तैयार किया गया है। और मजे की बात की हर तरह से जो है ना आप लोगों के लिए इनके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद है, यानी कि ऐसा नहीं कि जिन लोगों की बेसिक सी बेसिक नीड भी होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट, अगर वह साबुन लगाना चाहते हैं, वो फेस वॉश लगाना चाहते हैं, नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, एक नी ट्यूब लगाना चाहते हैं, या फिर लोशन लगाएंगे सर्दियां जब आएंगी तब तो उन तमाम तो लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें बस वो आप सिलेक्ट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे। और ऑल स्किन टाइप के लिए है, ये भी बड़ी बात है कि ये आपके हर स्किन टाइप के हिसाब से तैयार किया गया है। कोई भी इसके अंदर जो है ना वो नुकसानदायक अज़ा नहीं ऐड किए गए हैं जो कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाए। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम अगर हम आप लोगों को बताते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात यह है कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए है। बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है, ये जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो, बेरोनकी हो, ये सब कम हो जाते हैं, जबकि आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब, जैसे कि आप जानते हैं, एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क, ये तमाम चीजें जब आपकी खूबसूरत से चेहरे पर आती हैं तो आपकी खूबसूरती में मजीद इजाफा आ जाता है। और ना सिर्फ इजाफा बल्कि आपकी खूबसूरती मजीद जो है ना वो लॉक हो जाती है। अगर आप ये चीजें जो है ना वो जहन में रखते हैं कि भाई हमने जो भी प्रोडक्ट लगाए हैं हमें रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे जैसे मिलने चाहिए, तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में आप ट्राई कीजिएगा व्हाइटिश ब्यूटी सोप या फिर व्हाइटिश फेस वॉश। अगर आप साबुन लगाने वाले लोग हैं तो फिर आप व्हाइटिश ब्यूटी सोप इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो व्हाइटिश फेस वॉश लगाइएगा। जो विटामिन सी से तैयार किया गया है, ब्राइटनिंग है आपकी स्किन को बनाएगा, एंटी एजिंग के लिए है, बहुत ही अच्छा क्रीमी सा फेस वॉश है। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एक्नी की वजह से काफी वाला परेशान है, शदीद वाला परेशान है, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल है। ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी का खात्मा बल्कि आपके चेहरे पर एक्नी हो, एक्नी के निशानात हो, दाग धब्बे हो, चोट का निशान है, जलने का निशान है, इतनी सारे जिद्दी निशानात अगर आपके स्किन के ऊपर मौजूद है, आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है। फुल जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड की गई हैं, आप लोगों की स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर होगी, एक्नी फ्री होगी और बहुत ही प्यारी बन जाएगी। और साथ में अगर आप कोई भी फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट जो कि भाई आप लोगों को मेकअप से दूर रखे, या फिर इस गर्मी के मौसम में आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि आप कहीं लगाएं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका डेली बेसिस पर कहीं जाने का काम है, तो आप व्हाइटिश लव لولی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ جب آپ اسے استعمال کریں گے, یعنی کہ صبح کو لگائیں, رات کو لگائیں, دوپہر کو لگائیں, شام کو لگائیں, جب آپ کا دل کرے تب لگائیں. کیونکہ وائٹ ایج لولی کریم جو ہے ریڈینٹ الٹرا وائٹمنس کے ساتھ تیار کی گئی ہے. 30 وائٹمنس کے کیپسول اس کے اندر موجود ہیں, وائٹمن B3, وائٹمن C, وائٹمن D, وائٹمن E, ایسے بہت سارے وائٹمنس جو کہ آپ کی اسکن کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے نا سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے, تاکہ ایسا نہیں کہ بھائی اگر اس کڑکتی دھوپ میں آپ باہر نکل رہے ہیں, آپ کا کوئی ایسا کام ہے اور آپ کو باہر نکلنے کے لیے سنسکرین لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ کے پاس اچھا والا سنسکرین نہیں ہے, تو آپ وائٹ ایج لولی کریم لگا کر اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سورج کے ان خطرناک اثرات سے. تو آپ کی اسکن اگر سینسیٹیو ہے, آئلی ہے, ڈرائی ہے, نارمل ہے, تو ہر اسکن ٹائپ کے لیے ہے وائٹ ایج کے تمام پروڈکٹ, تو استعمال کرتی رہیے, خوبصورتیاں حاصل کرتی رہیے اور ڈائل کرتی رہیے 03-15-799-0595 0315-79-595 ہن نمبر تے رابطہ کریو جو تاں جے ایریا میں تاں جے قریبی جنرل سٹور سے ہی پروڈکٹ اگر نتھا ملن وائٹ ایج وارن جا تو تماں ہو اویلیبل کرائے سکو.

माओ ही सोचा पई डबल वालो गानो है वासु भाई कहते मुझे प्यारी अदीब के रहा कि जिनको सबसे ज्यादा अहमियत दी तो अब फैमिली इम्पोर्टेंट है ओके जी ओके और मुलायम दोसा कहते सिद्धू जी अर्ज किया है फ्री में शो में शामिल होना अच्छा नहीं लगता मुजाहिद इरादा क्या है कल व्हाइट एश क्रीम लेकर रहूंगा बिल्कुल सही इंसान के अंदर के रोज सदरा वो वाला प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए तो अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम लगा सकते हैं भाईजान ये तो हर एक इंसान की नीड है भाई इसे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है कोई एज लिमिट नहीं है तो व्हाइट एश लवली क्रीम में तो एक मरतबा जरूर लगा कर देखिएगा आपको बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट लगेगा बोलेंगे भाई वाह वाह सदरा सफा सही पे चवे क्या हाल है मैं भी आपके साथ साथ हूँ नाइस यो आज कोई अच्छा सा गाना मेरे नाम कीजिएगा ओके जी ओके और चाचा खालिद कहते हैं मेरी लाइफ में आपका शो बहुत अहम है बात है और फहीम शेख कहते हैं टॉपिक मेरी जिंदगी में मेरी फैमिली बहुत कीमती है मुझे लगता है जब मैं अपनी फैमिली से दूर जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा ऐसा होता है भाई ऐसा होता है हम अपनी फैमिली से वाकई बहुत प्यार करते हैं लेकिन बदले में मैं ये चाहती हूँ कि वो भी हमसे उतना ही प्यार करे बात ऐसी होती है जो शायद बतानी नहीं चाहिए और मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया और एम अंसारी कहते हैं टॉपिक पे अच्छा जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं बनिस्बत जिनसे मैं एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता है जिनसे मेरी वाबस्ता है ओके जिन करता हूँ यानी कि गाल समझ में चाहिए तान चाहता चवन गाल कह वाला अच्छा मुजाहिद बहुत ज़ार के स्टूडियो जी टॉपिक मेरे कीमती माँ बाप हैं उन जैसी कीमती चीज दुनिया में कोई चीज नहीं है क्या बोलते तो माँ भी यही बोलती उदास लड़की कैसी की वजह तुम ही हो जब मन वाला होता है सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग कोई बात नहीं मोमन ताहे लुंड हमारे साथ मौजूदी वालेकुम असलाम जू मुखे बुधायो हाँ भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो स्टोर से बाबा अवेलेबल करायो अवेलेबल नंबर 15 79 90 भाजी तव्हां सिंधी में नंबर अच्छा ॾाढो भलो गानो हलायो आहे अच्छा अॼु मां कोशिश कंदमि त प्रोग्राम में सॼियूं तव्हांजूं फरमाइशूं ई लॻायां चलो न गाल ते पोस्ट के लाइक शेयर करी छोड़ो

से निदा, मैं भी आप लोगों के साथ ही सुन रही हूँ ऐसे गाने, आप तो जानती हैं। हजार खान जदोही भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अदी, गुड शो, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई जान। ऐसे नारबाणी मार्सम भी अच्छी वया सीने में सदरा छा हलाओ, आबाद हूँ ना याद हूँ नहीं विसर, बिल्कुल गर्मी जो ना वागे हशर नशर कर छो है, गर्मी की वजह से जो है यकीन क्यों अलग सुगणी का बस दुआ करो ता मांगे दिन निकली वही।

बाल साई चंद्र सिटी शो इज पंडीज इन ब्यूटी प्राइवेट ये और उसके अलावा अच्छा फहीम कहते हैं कि माँ राज माँ की मोहब्बत है दिल की एक आवाज माँ की झोली में सब गम भूल जाते हैं माँ के बगैर हम अधूरे रह जाते हैं बिल्कुल तुम्हारा कहा है अब्दुल रज़ाक हमारे साथ

ఎస్ఎన్ఎల్ బుక్ టికెట్ గానా కదా వాసిన शाहिदा तुला कहते हैं मेरी बहने हैं ओके नदीन कहती है ओ मैडम जल्दी जल्दी नहीं हुआ आप लेट आई है और मैं वही सोच रही थी अरे रजा कहते हैं आप शामिल बिल्कुल जी सबके कमेंट शामिल होते हैं और अगर ये जो लोग शिकायतें करने बैठ जाते ना कि हमारी कमेंट नहीं पड़ती तो सच में दिल करता है कि उनके ना ही बात उनकी सच तो हो ना वो सच तो बोले ना।

0: शहीद आयतुल्ला खमनाई अज़ीम आलम ऐं अॻवान हो। शहीद सदाई सब्र ऐं साहिब जो मुज़ाहिरो कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ आयतुल्ला खमनाई खे भेटा पेश कंदे चयो आहे त शहीद आयतुल्ला
1: हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू टी ट्री और मिंट ऑयल से डैंड्रफ खत्म इट्स रिमूव्ड पाल मॉइस्चराइज्ड और
0: स्कैल्प इस्लामी मुल्क आहिनि हिकु ॿिए सां हर हाल में गॾु रहंदा। खमनाई जी आख़िरी रस्मनि लाइ ईरान खे हिकु हफ़्ते जी मोकल ॾिनी आहे। ईरान अमरीका सां ठाह करण लाइ बेताब आहे, डील लाइ मरी रहियो आहे। पर ट्रम्प चयो त अमरीका आहे, अमरीका वंजुला खे हिकु ॾींहं में शिकस्त ॾिनी, ईरान खे हारायो आहे। ईरान ॿीहर आबाद थियणु चाहे थो, असां सुठा माण्हू आहियूं। ईरान खे अॻूणे सुप्रीम लीडर जी आख़िरी रस्मनि लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। जंग बाद हालतूं तब्दील चुकियूं आहिनि। अमरीका खे हक़ीक़तूं तस्लीम करणियूं पवंदियूं। तेहरान में अज़बक हर मनसब सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हाईंदे मोहम्मद बाकिर कारीबाद चयो आहे त अबनहुमस में ईरान ऐं ओमान जे गडि॒यल इंतज़ाम जा बहितर नतीजो बहितर बणाईंदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ तुर्किया में वापारनि ऐं सनतकारनि सां मुलाक़ातूं। शारां सणप करण जी दावत। तुर्क सणपकारनि पारां पाकिस्तान में मुआशी सुधारनि जी साराह। तुर्क सणपकारनि पारां पाकिस्तान में सणपकारी वधाइण जी बि ख़ातिरी कराई वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल खिते खे तबाही खां बचायो। पाकिस्तान दुनिया में अमुन जे अलमरदार आहे। दिफ़ा वारे चयो आहे त वॾियूं कामयाबियूं माणियूं आहिनि। दुश्मन खे शिकस्त ॾेई हक़ वारी जंग में कामयाबी खे दुनिया बि तस्लीम माणी। पाकिस्तान दुनिया में इज़त ऐं वक़ार माणियो। शिदत अख़्तियार करे क़ौमी चाराह ते धरणो। छटो ऐं आसपास जे इलाक़नि में जामवा ऐं ॿियनि शाखनि में पलबो। जाम नवाज़ अली में दिलोर माइर जो कुझु पाणी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो ऐं धरणो। दोदापुर भरिसां बेगारी केनाल मां निकिरनि कंज आबादगारनि जो पाणी था जो मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे KTN न्यूज।
3: सुनते रहो GAFM 91.6।
4: नहीं बुधो प्या सिंध जो आवाज़।
5: ओ पिता जा पिता बसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6
1: अवेलेबल है, तो आप इसे बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है और डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। और सबसे बेहतरीन बात कि ये विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फार्मूलेशन इसके अंदर एक ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जनाब, जो जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है। और इसी के साथ साथ बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जल्द जो है वो खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी भी सारी चीजें, वो आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देती है और खूबसूरती में इजाफा करती है। रोजाना इस्तेमाल आपकी जल्द को कुदरती निखार और खूबसूरती, चमक और जो है ना आपकी स्किन को बेहतरीन सा ब्यूटी सा निखार देने के लिए है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कीजिए ब्यूटी क्रीम, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है डी स्किन फेस वॉश। क्या बात है जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली नहीं, इसके साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल करेंगे जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। इसका मकसद और मतलब ये होता है कि जब आप

क्या बात है। चनेसर थेबू हमारे साथ मौजूद हैं। चनेसर थेबू आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमजद अली सुमरू हमें सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून। और चाचा खालिद कहते हैं मुझे फहीम शेख ने दी स्किन क्रीम का फेस वॉश, TCS कर दिया है फ्रॉम लाड़काना, गुड बॉय। क्या बात है, रियली ये तो अच्छी बात हो गई। चले एक आध जो है ना आप AM अंसारी को भी भेज दीजिए, वो भी बड़ा जो है ना वो उनका दिल है कि मैं लगाऊं, लेकिन उनके पास जो है ना वो समझ रहे हैं। उनको भी भेज दीजिएगा। और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया खुश आमदीद। और उसके अलावा मुजाहिद कहते हैं कि अल्लाह रे सिंधो आपने मुझे बुढ़ा बोला, मैंने तो नहीं बोला, मैं किसी को बुढ़ा नहीं बोला, मैं तो चाचे को भी नहीं कहती, आपकी उम्र बड़ी हो चुकी है भाई, मेरी नजर में जितने लोग हैं वो सब मेरी उम्र के हैं। क्या होता है, एज बस सिर्फ नंबर होते हैं और कुछ नहीं। और उसके अलावा नजरी कहती हैं कि ऐसे सॉन्ग से हाँ भाई सुने गाने। और उसके अलावा AM कहते हैं मैं भी प्रोडक्ट्स से यूज करना चाहता हूँ, पर हाय रे गुरबत। क्या ही कर सकते हैं। और अमजद अली सुमरो क्या कहते हैं, फ्रॉम सालेह पट, ओके जी, और शामदीद कहा जाता है जी। निदली कहते हैं गर्मी की वजह से वाकई गुस्सा ज्यादा आता है, प्यार से बात करना मुश्किल हो गया है। हाँ जी ये तो है, और गर्मी में ना वाकई आहे पावर अच्छे अगर माता इन लाइ मां सोचो तो सभी जगह ना

सीरियसली अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अदा मेरे सवाल का जवाब है आपके पास, औरत अगर सीढ़ी हो तो उसको गाय कहते हैं, मर्दों के ये वाक्य जो

अच्छा अब्दुल अहद अबासी तव्हां खे चऊं था ख़ुश आमदी, तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे, मां कोशिश कयां थी तव्हांजो गानो बि हलाईंदासीं। बिल्कुल, तव्हांजे अगरि करीबी जनरल स्टोर ते तव्हांजे ॻोठनि में तव्हांजे एरिया में वाइटिश प्रोडक्ट्स हुजनि या फिर डी स्किन प्रोडक्ट्स हुजनि, अगरि नथा तव्हां इस्तेमाल करे सघो, वजह इहा आहे त तव्हांजे एरिया में नथो मिले, त पोइ तव्हां छा कंदा, तव्हां डायल कंदा 03157990595। ही नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। असां मोहम्मद ताहिर लुंड भाउ तव्हां असां सां गॾु मौजूद आहियो। ठीकु आहे जी, ठीकु आहे, तव्हांजी फरमाइश जो गानो बि हलाइण जी कोशिश कंदासीं। और सनाना बिरोही भाई, वालेकुम अस्सलाम, ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? एसन कहते हैं सची ॿुधा कसम दई। मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। सऊदी अरबिया से आप हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं आप। अच्छा खुशी मोहम्मद खपरी भाई हमारे साथ मौजूद है सिटी। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। हाँ बस मुझे गलत ही हुए सारे शरीर। ओके जी, अब्दुल अहद लिखते हैं कि दुखायल दिलन जी दुआ भी मिलंदी, अहद रखम कुछ आला भी होंदा। वाह वाह वाह वाह।

अच्छा हिदायत अल्लाह कहते हैं कि वैसे सदरा मैं आपका शो जब भी सुनता हूँ तो आपका पंखा हो जाता हूँ, वो मेरा मतलब ये था कि आपका फैन हो जाता हूँ। वहीदा रही है, वहीदा है जनाब। और उनका अलावा जी निदड़ी कहती है कि सही है। अच्छा अंसारी साहब कहते हैं कि किसी से भी अब ताल्लुक नहीं एक तेरे सिवा, मैं आजकल तेरी उल्फत के इत्तेकाफ में हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। उनका अलावा ॾाढा बाबा ॾाढा।

भई रोंदा न तां जी हल्का पे जी वेना इस्तेमाल कयो अखिन जी हेठा हल्का थी वया के भी चों था बाबा तां डी स्टार दादा हल्का पे जी वया स्किन ब्यूटी क्रीम लगा डी स्किन फेस वॉश भी लगायो जी मिली वे कहा कहते हैं आजकल सच्चे लोग नहीं गाल खाते तो ऐसा होता और अगर तुम नहीं लाल अली आ चुके हैं वाले कुमरमा कहते मोहतरमा तमाम ओ इतने वे ये सी हुई था वो अच्छी गया तो पोस्ट की लाइक एंड शेयर भी करूँ अस्सलाम वालेकुम मुसव्वर शरीफ राम राज सिंह देवी राज शामिल आए मोहब्बत अच्छा ए मन सारी कहते ओ इते रखे से ओ यहाँ सिफारिश करायो मता असाते क्या सची वने ने हाँ बिल्कुल मां तो कोशिश क्या दी तवा के मिली वने बी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट हां दिसूं था त ता ने मोकलन ता या सिर्फ मोहब्बत चाचे ताई होयो ने वैसे चंदा ना मानू मानू जो फर्क हुंदो आए बिल्कुल यही गाल अच्छा नदी कहती है मैंने नोट कर लिया तुमने अच्छा अच्छा 30 बार कहा मैं अच्छा वाकई कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ आई नो सही सही भी मैं बहुत मरतबा बोलती हूँ बिलाल कहते हैं देखा जाए तो आजकल जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज मोबाइल और गाड़ी है अच्छा गाड़ी कौन सी अच्छा वफा मुमताज अली खुशबू भी सुन रही है भाईजान खुशामदीद खुशामदीद अच्छा फहीम कहते हैं आप नंबर सिंधी में बताती हो तो अच्छा लगता है मतलब मानुन के सिंधी में नंबर जो ना समझ में ही आ कुछ मानू वेचारा मासूम है सारे प्रोग्राम में जेकी नंबर जो ना अगर बुधाई ना इंग्लिश में तो उनके समझ में ना इंदो उन्हें मानू जला थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी असा के भी जी हर को मानू जो फायदो वेठे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए

पांजे एरिया में अवेलेबल कराए। सो अवेलेबल कराए बाबा। हजार भाई कहते हैं कि उसका एक मैसेज अच्छा कहते हैं उसका एक मैसेज रात को आता है और एक मैसेज सुबह को आता है। पता नहीं वो प्यार कर रहे हैं या दवाई दे रहे हैं। इस प्यार को क्या नाम दे समझ नहीं आ रहा।

अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा टॉपिक, हाँ मेरे पास बहुत कीमती चीजें हैं, मेरी फैमिली, दोस्त और तुम. क्या बात है, माँ भी मारो लाए अहम आया. जिनके लिए होनी चाहिए उनके लिए तो नहीं हूँ. यहाँ अगली गाला तांज लाया आया. जिशान राजपूत हमारे साथ मौजूद है. हेलो ब्यूटी शो अमा जो पंजो प्रोग्राम आहे जेमे तमहा असाकी गोई तमा के खूबसूरती जो गाली बुधाई ना आयो ए गालन सा गडो गड तमा के खूबसूरत थण वारा प्रोडक्ट भी बुधाई ना केड़ा प्रोडक्ट तमा लगाए करी तमा के खूबसूरती मिली सगे थी पण सा गडो गड तमा असाकी जॉइन कयो था ए फेसबुक वारा मानो पोस्ट के लाइक एंड शेयर के ना हेलो बाबा ए इते टाइम थियो आए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था उनका पर वापसी जल्दी मोटी तमा नेटू था तमा करी नवन जो इते बैठा हो जो मा ओ ही वनी ओ ही मोटा सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड द स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश beauty products and these skin beauty products. Sunata raho and sunati.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्किन असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।
4: कोई ना जग में जाने रब मासूम
5: अजरंगी
1: दिल्ली के टुकड़ों
5: सिंध के आवाज।

です、どうぞ。ओगिरी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ साथ मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे उनकी और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. ओके सो प्रोग्राम में आप हमारे साथ साथ

ओके जी, साथ साथ आप ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो जनाब जल्दी कीजिए। किस चीज का वेट कर रहे हैं अभी तक अगर नहीं चाहिए और ये बारे में आप लोगों को बताते ब्यूटी क्रीम लोगों की खूबसूरती में बता ही नहीं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल यानी कि बताती हूँ अगर तुम सिर्फ इस तरह के स्टार थी सफ़ा स्किन ग्लोइंग नजर अचन शुरू थी वेंदी तो तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर रहे तुम्हारे चेहरे स्किन ग्लोइंग थी वेंदी ब्यूटिफुल थी वेंदी पीण सघंदा। उनखां अलावा हिकड़ी मज़े जी ॻाल्हि आहे त हिन खे राति जे टाइम तव्हां इस्तेमालु कजो छो त इहे नाइट क्रीम आहे ऐं ॿी मज़े जी ॻाल्हि बि लॻाए सघंदा। ऐं डी स्किन फेस वॉश तव्हां लॻायो जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे जेको तव्हांजी स्किन आहे तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज़ तव्हांजी स्किन खे क्लीन बणाईंदो आहे।

15 95 15 595. ही नंबर अथव जैसे तुम राबो करे एजन स्टोर से गोठन में पांजे एरिया में वाइटिश जा प्रोडक्ट हुजन या वरी डी स्किन जा प्रोडक्ट हुजन ही तमाम

अच्छा न टाइम असो प्रोग्राम जो बे प्रोग्राम जो है पंज बजे का वी छह बजे ती यानी कि पूरे पंजे बजे असो प्रोग्राम स्टार्ट पूरे छह बजे खत्म क्योंकि पूरा घंटो असो प्रोग्राम हलो उन अंदर कोई भी कमर्शियल वगैरह न हों सो तुम उनमें असा ज्वाइन कर सको ठीक है अच्छा हाँ बिल्कुल तुम्हारी पुछंदी कोशिश या होंगी सभी तकरीबन फीडबैक शाम ले प्रोग्राम रखी सको पर तुम पान डिसंदा काफी सारी रश होंगी प्रोग्राम में खोड़ सारा मानू हूं सो सभी मैसेजेस रीड क्यों उनके अलावा शोनी कहती आप ही मैं तो इस टाइम पढ़ती हूँ चले कोई बात नहीं कोशिश किया करें एक दो मैसेजेस करने की और थोड़ा सा शामिल होने की और उसके अलावा जो है यहाँ पर टाइम हो चुका है कि आप लोगों से इजाजत ले वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी थियण वारी आहे पूरे पंजे बजे जो ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी ऐं को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हाइजो जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे त उन लाइ माज़रत कयूं था पंहिंजो उहो हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा ठीकु आहे सो मोकिलाणी न आहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय बाय लव यू ऑल।

0: अपना शहर अपना घर और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैन तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे।
5: वज़ीर कराची खे वफ़ाक हवाले करण वारे एमक्यूएम जे मुतालबे खे सियासी ब्लैकमेलिंग करार ॾेई छॾियो। फारूक सत्तार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रदअमल ॾींदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलीना मेमण चयो त एमक्यूएम अॼु बि शॉर्टकट वारी सियासत ते यकीन रखे थी। वफ़ाकी मुदाखलत जहिड़ा मामला मुतहिदा जी सियासी ब्लैकमेलिंग जो सबूत आहिनि। अवामी मैंडेट 1973 जो आइन ऐं सिंध का तजुर्बे गाह न आहे। फारूक सत्तार अवाम पीपीए खे वाज़े मैंडेट ॾिनो। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह जो मुजारी शहीद आयतुल्लाह जो मुर्दा जो सिलसिलो शहीद रहण लाइ हज़ारनि जी तइदाद में शहीद आयतुल्लाह खामनाई

0: माज सुभाणे अदा कई वेंदी। 1 करोड़ माण्हुनि जे शरीक थियण जो इम्कान। सूमर ॾींहुं 6 जुलाई ते तेहरान में मर्कज़ी ताज़ियती इजतमा थींदो। मुड़ 9 जुलाई ते मशहद में मिटी माओ हवाले कयो वेंदो। शहीद आयतुल्लाह खमनाई अज़ीम आलिम ऐं अॻवाण हो। शहीद सदाई सब्र ऐं साहप जो मुज़ाहिरो कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आयतुल्लाह खमनाई खे भेटा पेश कंदे चयो आहे त शहीद आयतुल्लाह खे रुगो ईरानी न पर किरोड़े मुस्लमान खे अज़ीम अॻवान तौर यादि कंदा। पाकिस्तान ऐं ईरान ॿाहिरि इस्लामी मुल्क आहिनि, हिकु ॿिए सां हर हाल में गॾु रहंदा।
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice.

0: कमलाई जी आखिरी रस्मन ला ईरान के हफ्ते की मोकल दिनी है। ईरान अमेरिका से छा कर बेताब है, डील लाइ मरी रो है। अमरीकी सदर ट्रंप है तो अमरीका ईरान के अगूणे सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मन ला गाल रोको है। अमरीका वेंजुला के एक डी में शिकस्त डी, ईरान के भी हारा है। ईरान बीहर आबाद थे चाहे तो असा सुठा मानू आय। ईरान के अगूणे सुप्रीम लीडर की आखिरी रस्मन ला हफ्ते की मोहलत डी है। जंग बाद हालतू तब्दील थी चुक्य है। अमरीका के हकीकतू तस्लीम करणी पवंद। तेहरान में उज़्बक हमनसब से मुलाकात दौरान गालाइंदे मोहम्मद बाकर कालीबाद है तो अबन हुरमस में ईरान ओमान के गड़ियल इंतजाम जो बेहतर नतीजा निकरंदा, ट्रांजिट के भी बेहतर बणाईंदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया में व्यापार सनअतकार से मुलाकात। शहबाज शरीफ पारा तुर्क सणपकार के पाकिस्तान में सणप करण की दावत। तुर्क सणपकार पारा पाकिस्तान में मुआशी सुधार की सारा। तुर्क सणपकार पारा पाकिस्तान में सणपकारी बधाने की खातरी कराई वही। वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल खिते की तबाही का बचाओ। पाकिस्तान दुनिया में अमुन जरम बरदार मुल्क तौर उभर है। सियालकोट में तकरीब दिफा वे वजीर ख्वाजा वाली जंग में कामयाबी के दुनिया में तकसली महाज से भी पाकार माणियों। लाहौवा ए ज्यादती वे केस में छिड़काइंद इंकशाफ। पढ़ी औरतन पारा अदालत में दिनल बयान जहाशद करण से केस में गिरफ्तार जवाब नायब वजीर आजम जो डोटो है। छठे में पानीकोट शिदत अख्तियार कर वही। आबादगारन जो कौमी शाहराह धनो छठो ए आसपास के इलाक में पानी शदीद कोट खिलाफ आबादगारन एहतजाज किया। जामवा ए बेन शाखन में पानी छड़ने जो मुतालबो। जाम नवाज अली अमीर दिलोर माइनर की पुछली की आबादगारन जो पानीकोट खिलाफ मुजाहरो ए धरणो। दोदापुर भरसा बेगारी केनाल में निकरंदड़ शाखन की आबादगारन जो पानीकोट खिलाफ एहतजाज। आबादगारन पारा ज़री पानी की कोट खत्म करण जो मुतालबो। कुंडरी में मुबैना तौर से जहरीलो खाधो खाने सबब ब सगा भायर फोर्थ गोठ हयात। गपनो में खाधो खाने सबब 10 साल अली हसन ए 12 साल मोहम्मद हसनैन आरई की हालत खराब थी। अली हसन तालके अस्पताल में दम डिनो। मोहम्मद हसनैन हैदराबाद मुंतकिल करण दौरान फोत थो। फोती निगरन के नाने असगर की हालत पिण खराब। फोती निगरन के वारसन जो चवण है तो निगर रात मानी खाई सुता हुआ। सुबह जो सदन हालत खराब थी जिते थी सके तो खाधे में का जहरीली शई किरी हुए जैसे बार फोत थे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: ठीक आहे
1: या कंहिंखे पब्लिकली डिफेम करण या एफरे टाइप जा हूंदा आहिनि सो या कंहिंखे थोरो हरास करे छॾण या घणो हरास करे छॾण इन क़िस्म जे ऑफेंस खे असां नॉन कॉग्निज़ेबल या एनसी चवंदो हाणे अचूं था एनसी सो कॉग्निज़ेबल केसिस में एफ आई आर कटी वेंदी आहे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उहे ऑफेंसिस जी मां पहिरीं डेफिनेशन ॿुधाई नॉन कॉग्निज़ेबल्स में चवंदा आहिनि एनसी हाणे एनसी सां पर्पज़ इहो ई आहे जेकी मां डेफिनेशन ॿुधाई उहे एॾा सीरियस क़िस्म जा ऑफेंस न हूंदा आहिनि पर पुलिस पोइ बि हुनखे पंहिंजे रिकॉर्ड में रखंदी आहे ऐं हुनखे मैजिस्ट्रेट जे साम्हूं पेश कंदी आहे साईं हीअ रिपोर्ट आई आहे अगरि मैजिस्ट्रेट चाहे त उन ते जेको आहे हिननि खे इजाज़त ॾेई करे उन माण्हूअ खे उहे चाहिनि त अरेस्ट करे सघनि था पिया ऐं उन जे लाइ एफ आई आर बि रजिस्टर करे सघनि था सो जेके लेस लेवल जा जेके ऑफेंसिस हूंदा आहिनि त उनखे असां एनसी चवंदा आहियूं बाद में उहे एफ आई आर जी शकल अख़्तियार करे सघनि था विद परमिशन ऑफ द
0: ठीक आहे एनसी खां बाद में ओके उनखे परमिशन ॾियणी मतिलबु वठणी आहे ऑल राइट
1: परमिशन
0: सर सीआरपीसी जो सेक्शन 154 एफ आई आर बाबति छा थो चवे
1: एफ आई आर उही मां ॻाल्हि कई त 154 ॿुधायो थो पियो असांखे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चवे थो त कोई बि माण्हू कहिड़े बि क़िस्म जो अगरि ऑफेंस ॾिठो आहे या क्राइम कंदे ॾिठो आहे या उन सां को इशू थियो आहे या मामिलो थियो आहे चाहे उन सां पर्सनल इशू थियो हुजे या उन जे कंहिं फैमिली मेंबर सां थियो हुजे या उहो पाड़े में थींदड़ कोई बि अहिड़ी शइ आहे को अगरि डोह वग़ैरह थियो आहे उन उहो इंसिडेंट ॾिसी वरितो आहे त उन जे बारे में पुलिस खे वर्बल या रिटन फॉर्म में काई बि एप्लीकेशन ॾेई करे या उनखे इंफॉर्मेशन ॾेई करे उहो उन ते एफ आई आर कटाए सघे थो उनखे सम्झो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जेकी 154 में मेंशन थियल आहे
0: ठीक आहे अच्छा सर काइंड्स ऑफ एफ आई आर ते अगरि असां चऊं नेम्ड एफ आई आर अननेम्ड एफ आई आर डिले एफ आई आर एज़ वेल एज़ काफ़ी क्रॉस एफ आई आर बि हूंदी आहे ज़ीरो एफ आई आर बि थी सघे थी इन्हनि खे थोरो डिफाइन
1: कयो इहे डिफरेंट काइंड्स आहिनि हाणे इहे नॉर्मली तव्हांखे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स में न मिलंदियूं तव्हांखे
0: अच्छा
1: नॉर्मली लेवल ते न मिलंदियूं पर छा आहे इहे टाइप्स आहिनि काइंड्स आहिनि जेके एफ आई आर खे डिस्टिंग्विश कंदा आहिनि मेन एफ आई आर खां जीअं पहिरीं मां एफ आई आर जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तव्हांखे ॿुधाई त हिन में जेको तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो नेम्ड एफ आई आर नेम्ड एफ आई आर जो मक़सदु इहो आहे त अक्यूज़ पर्सन जा जेके नाला आहिनि कंप्लेन आहिनि अक्यूज़ पर्सन जा नाला ॿुधायो थो पियो त बाबा हिननि असां सां इहो ॾोहो कयो आहे हिननि असां सां इहो जेको जुर्म कयो आहे ॿियो आहे अननेम्ड जेको तव्हां ॿियो नालो अननेम्ड एफ आई आर इनखे चइबो आहे नामालूम अफ़राद
0: ठीकु आहे
1: ॾोहो त थियो जुर्म त थियो पर कयो कंहिं माण्हू जेको मतिलबु बाए फेस सुञाणे वेंदासीं अॼु या सुभाणे जॾहिं की बि अगरि आइडेंटिफिकेशन परेड थींदी अंडर कानूनी शहादत माण्हू त असां बाए फेस सुञाणे वेंदासीं पर माण्हू जा नाला खपनि उनखे चवंदा नामालूम अफ़राद त ॾोहो थियो जहिड़े बि तरीक़े सां थियो या ॾिठो वियो माण्हू जी ख़बर नाहे कंहिं कयो आहे छा कयो आहे कहिड़े कयो आहे या ॿुधियो कंहिंखां इंफॉर्मेशन ॿुधी साईं असां वियासीं इंसिडेंट ते वियासीं हीउ मामिलो थियो कंहिं कंहिंखे क़तल करे छॾियो पर असांखे माण्हू जी ख़बर नाहे कहिड़ा माण्हू हुया उहे इन्वेस्टिगेशन डिफाइन कंदी त कहिड़ा माण्हू हुया उहे कहिड़ा माण्हू इन्वॉल्व थिया आहिनि थर्ड हुयो तव्हां जेको पुछियो पिया त डिले एफ आई आर
0: डिले एफ आई आर
1: हाणे डिले एफ आई आर जो सीन इहे रीज़न्स ईअं हूंदा आहिनि बाबर के इंसिडेंट थी चुको आहे जीअं अमूमन ॻोठनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो या शहरनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो त माण्हू कनेक्टेड आहिनि हिक ॿिए सां ॾाढो सपोज़ कंहिंजे घर में चोरी थी थी वञे
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
3: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
5: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
1: कयो आहे कहिड़े कयो आहे या ॿुधियो कंहिंखां इंफॉर्मेशन ॿुधी साईं असां वियासीं इंसिडेंट ते वियासीं हीउ मामिलो थियो कंहिं कंहिंखे क़तल करे छॾियो पर असांखे माण्हू जी ख़बर नाहे कहिड़ा माण्हू हुया उहे इन्वेस्टिगेशन डिफाइन कंदी त कहिड़ा माण्हू हुया उहे कहिड़ा माण्हू इन्वॉल्व थिया आहिनि थर्ड हुयो तव्हां जेको पुछियो पिया त डिले एफ आई आर
0: डिले एफ आई आर
1: हाणे डिले एफ आई आर जो सीन इहे रीज़न्स ईअं हूंदा आहिनि बाबर के इंसिडेंट थी चुको आहे जीअं अमूमन ॻोठनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो या शहरनि में अगरि तव्हां ॾिसंदो त माण्हू कनेक्टेड आहिनि हिक ॿिए सां ॾाढो सपोज़ कंहिंजे घर में चोरी थी थी वञे टीके या कंहिं बि अहिड़ी शइ ते ॻाल्हाए छॾियो त हाली उन जुर्म खे ईअं सम्झो त उन जी कोई बि जेकी इंफॉर्मेशन आहे पहिरीं जेको अगरि ऑफेंस थियो आहे ॾोहो थियो आहे या उहो जेको माण्हू विक्टम थियो आहे या जेको अक्यूज़ पर्सन आहे या जंहिं उहो ज़ुल्म कयो आहे उनखे माना ईअं सम्झो हथीको करण जे लाइ या उनखे स्केप न थियण जे लाइ त तव्हां कहिड़े बि जॻह ते वञी करे एफ आई आर कटाए सघो था देन उन इन्वेस्टिगेशन थींदी देन पुलिस

0: छाकाणि उन कंसर्न हद वटि कंसर्न जुरिसडिक्शन में वञी करे उन एफ आई आर खे ट्रांसफर करे छॾी। सो इहे कहिड़े बि हद में एफ आई आर कटिजी सघे थी कंहिं बि पर्टिकुलर जुर्म ऐं ॾोह जे लाइ, सपोज़ चाहे उहो पब्लिकली थिए या थ्रू मीडिया थिए, कंहिं माण्हू ॾिसी वरितो आहे तुंहिंजी एफ आई आर कटाए सघे थो पियो। नंबर न हूंदो आहे, जंहिं हद में वेंदी उहो ई हुनखे नंबर ॾेई
1: करे सघे थो। ठीकु आहे, सो लिसनर्स, बिल्कुलु प्रोग्राम जारी आहे। लीगल कॉर्नर में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि ऐं टॉपिक आहे असांजो एफ आई आर, एज़ वेल एज़ तव्हां असां ॾे ज्वाइन बि करे सघो था। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488। हींअर हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं, असां सां गॾु रहिजो।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था जिते हो जे तहफुज जदी सहूलियतों ए मंजूर थियल सिक्योरिटी
3: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
2: सखर शिकारपुर रोड ते
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
3: एक शानदार ए काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
2: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
3: रिहायशी प्लॉट 80-120 150 ए 200 गज जा
2: ए कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज ए 600 गज
3: तव्हांखे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं
2: साफ मिठो पाणी
3: बिजली गैस
2: 24 कलाक सिक्योरिटी
3: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
2: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो
3: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
2: फौरी कब्ज़ो

0: अथॉरिटी रजिस्ट्री।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: किते तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
4: साफ में तो पानी
3: बिजली गैस
4: जो ये सिक्योरिटी
3: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वही गाल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वेजो आहे
4: जेको रिहाइश आई सीड़पकारी बिन्ही लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
3: अजी पेंजे प्लॉट की बुकिंग करायो
4: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री 50 गज आई 600 गज
3: हिते तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
4: साफ में तो पानी
3: बिजली गैस
4: 24 कलाक सिक्योरिटी
3: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वही गाल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वेजो आहे
4: जेको रिहाइश आई सीड़पकारी बिन्ही लाए बेहतरीन मौके बनाए थो
3: अजी पेंजे प्लॉट की बुकिंग करायो
4: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
3: कॉन्टेक्ट
4: 03009317252
3: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
4: तमाम से महफूज मुस्तकबिल बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब
5: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद ए लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्ते गुर्दे मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो टाइम सुबह 10 खां शाम 6 वगे ताईं एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे आचार से चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश का बचण नंबर वठण लाए 03 27 84 60 746
6: यार मछा क्या किथे वन्या घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही ना शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी
7: छो भला छा छा तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
6: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल है न भुख सही लगे थी जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वन था सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही ना
7: यार तुझा घणा न बस एक ही मसलो आ
6: एक इहो की है
7: हाँ तुझो मैदो खराब आ छा तो न बुधो आ मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी न हाजमो थींदो न ताकत मिलंदी
6: त पो मां छा कयां
7: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स एक कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो मजबूत करे छींदो भुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हजम थींदई पेट फूकजण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई
6: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
7: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी राबते जे लाए नंबर भी अथई 03055800616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
8: खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
3: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
8: DHMS सिंध
3: RHMP इस्लामाबाद
8: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
3: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
8: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
3: कमर दर्द
8: अर्कुन हिस्सा
3: जोड़ों का दर्द
8: हेपेटाइटिस
3: वजन की कमी या ज्यादती
8: बे औलादी
3: गंजपन का

0: आपका सिक्योरिटी।
1: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी बेजो आहे।
0: जेको रिहाइश आई सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो।
1: अजी पंहिंजी प्लॉट जी बुकिंग करायो।
0: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री 50 गज आई 600 गज।
1: हिते तव्हां खे मिलन थियूं जदीद सहूलियतूं।
0: साफ मिठो पाणी,
1: बिजली, गैस,
0: 24 कलाक सिक्योरिटी।
1: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी बेजो आहे।
0: जेको रिहाइश आई सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो।
1: अजी पंहिंजी प्लॉट जी बुकिंग करायो।
0: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री।
1: कॉन्टेक्ट
0: 03331725 2
1: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर।
0: तव्हां जे महफूज़ मुस्तक़बिल ऐं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतिखाब।
2: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद ऐं लाड़काणे जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संदन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन खां अलावा पित्ते गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे ताईं। एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर। हर जुमे ऐं आचार ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ़्त। रश खां बचण ऐं नंबर वठण लाइ 03 27 84 60 746।
3: यार मां छा कयां, किथे वञा, घर में वेठो आहियां पर ठीक ई न आहियां। शायद मुंहिंजी ज़िंदगी लाइ का दवाई नाहे ठही।
4: छो भला, छा थियो तोखे?
3: मुंहिंजी ते मसलनि जी कतार लॻल आहे। न बुख सही लॻे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए। पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी। कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
4: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
3: हिकु? इहो कीअं?
4: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राबु आहे।

0: ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
1: त पोइ मां छा कयां?
0: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। हे कुदरती जुज़न मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुल ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट पोखजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
1: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
0: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-616। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
2: होमियो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
0: DHMS सिंध,
2: RHMP इस्लामाबाद,
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
2: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
2: कमर दर्द,
0: अर्कुन हिस्सा,
2: जोड़ों का दर्द,
0: हेपेटाइटिस,
2: वजन की कमी या ज्यादती,
0: बे औलादी,
2: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ। सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सबका वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
0: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
2: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
0: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री। 50 गज़ ऐं 600 गज़,
2: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
0: साफ़ मिठो पाणी,
2: बिजली, गैस,
0: 24 कलाक सिक्योरिटी।
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सबका वॾी मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
0: जेको रिहाइश ऐं सिफारी कब्ज़ो तूं
2: हुसैनी
0: बहितरीन इन्वेस्ट
3: क्लिनिक NIC जो मशहूर डशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जो सूर, कंघे जो सूर, हॾनि जे मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जो सूर, ख़ारिश, ॿारनि में कद जो न वधण, मोटापो, पिते, गुर्दे ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। टाइम सुबुह 10 खां शाम 6 वॻे ताईं। एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर। हर जुमे ऐं आचार ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ़्त। रश खां बचण ऐं नंबर वठण लाइ 0327-84-60-746।
1: यार मां छा कयां, किथे वञा? घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां। शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई हिक लगल आहे, न भुख।
4: धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
4: GA FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: कहाँ पे हो? 03000113488। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी अदा केर था गलायो?
1: मेहरदीन जाफरी
0: सलाम। ओके जाफरी साहब, प्रोग्राम मां बुधो पया, केड़ो सवाल पूछण चाहिंदो? ओके ही बोलजी पया आई थिंक सर, एफआईआर ते अक्सर माण्हुनि खे जेको आहे या ज़हन में ॻाल्हि हूंदी आहे त एफआईआर जेकी आहे त अलाए हुन जा पैसा वरिता वेंदा आहिनि, छा एस पर लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट आहे एफआईआर, या वरी तव्हां ॾिसो पिया त फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर कोन पई थिए, पैसा वरिता वञनि पिया?
2: एफ आई आर जा त को पैसा हूंदा ई
0: आहिनि ई न, ठीकु
2: आहे, छोकी पुलिस जो पर्पज़ इहो आहे, क्रिमिनल जस्टिस जो हिसो आहे, क्रिमिनल जस्टिस जो जॾहिं हिसो आहे त हुन जो पहिरियों स्टेप ई एफ आई आर आहे। अगरि कोई वठे थो पियो त लाज़मी हुन ते वॉच आउट थिए, न हुन ते पॉलिसीस ठाहियूं वञनि, बहरहाल अहिड़ो को न आहे।
0: मतिलब हीअ जेके असांखे माण्हू ॿुधनि पिया या ॾिसनि पिया, उन्हनि खे अवां इहो चवंदा एफ आई आर जा पैसा कोन आहिनि,
2: पैसा न हूंदा।
0: अगरि को वठे पियो त हुननि खे छा करणु घुर्जे?
2: वठे थो कंप्लेन करनि,
0: कंहिं वटे?
2: आई जी वटि, डी आई जी साहब वटि, एस एस पी साहब वटि, एस पी वटि, जेके हुनजा हायर ऑफिशियल्स आहिनि उन्हनि वटि इन जी कंप्लेन करनि, कंप्लेन करनि, निशानदिगी करनि त असां खां पैसा था वरिता वञनि। एंटी करप्शन कोर्ट खुली पियूं
0: आहिनि,
2: एंटी करप्शन इदारा खुलिया पिया आहिनि, सो कराए सघंदा पिया, ॾेई सघंदा पिया, बहरहाल एफ आई आर जा पैसा।
0: अच्छा, इहे ॻाल्हियूं बि आहिनि, थोरा रूमर्स आहिनि त हाणे एफ आई आर अगरि असां पैसा न ॾिए पसंदि जा उहे सेक्शन कीअं पिया ॾिसो?
2: इहो डिपेंड करे थो त मां जीअं पहिरियों चयो, जीअं मां चयो त नैरेटिव, जीअं मां चयुमि नैरेटिव, हाणे अधे बि हिकिड़ी कॉल कई त साईं पोयां कॉल्स इहो अचनि पियूं। असांखे पहिरियों रिफॉर्म्स इहे हूंदा तव्हांजा के मेरिट, जेसिताईं मेरिट प्रिवेल न कंदी, कॉम्पिटेंट माण्हू जेसिताईं मथे इदारनि में न ईंदा ऐं कॉम्पिटेंट माण्हू पंहिंजो रोल प्ले न कंदा, तेसिताईं इदारनि में निज़ाम ई हलंदो रहंदो। बहरहाल चवंदा आहिनि न त बहितर इहो आहे त अगरि कोई अहिड़ो हरकत करे थो पियो या पैसा वठण जी करे थो पियो या अगरि सेक्शन पंहिंजी मर्ज़ी ते हणाए थो या पूरो कंहिं बि कंपे बि पूरो जो पूरो जेको वर्जन आहे वर्बली हुजे या रिटन फॉर्म में हुजे, उहो वर्जन ई चेंज करे थो छॾे ऐं पंहिंजे मर्ज़ी जा सेक्शन हणे थो पियो, त हुन जे लाइ एस पी वटि, एस पी साहब वटि डायरेक्ट, जेके बि हद जा एस एस पी आहिनि या जेके आई जी साहब आहिनि उन्हनि त हे कंसर्न हद जो जेको बि एस एच ओ आहे या कंसर्न ऑफिसर आहे, इहो मुंहिंजो पूरो जो पूरो वर्जन ई चेंज थो करे ऐं मुंहिंजी एफ आई आर खे वीक थो करे पियो। मां जेको वर्जन ॿुधायो लिखियो, जेको हिननि पंहिंजी मर्ज़ी ते लिखियो आहे, उहो पूरो जो पूरो बेनिफिट ॾिए थो पियो अदर साइड खे, अक्यूज पर्सन खे, जंहिं जुर्म कयो आहे या ॾोहु कयो आहे। सो हिन जो अल्टीमेट हली वियो आहे त हायर ऑफिशियल्स खे जेको आहे न कंप्लेन्स।
0: ऑल राइट, सो बिल्कुल हींअर असां हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल करण वारा आहियूं। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488। लीगल कॉर्नर प्रोग्राम आहे, एडवोकेट शहबाज़ हफीज़ साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं अवां कॉल करे सघो था, पंहिंजा सवाल बि पुछी सघो था अबाउट द टॉपिक एंड एज वेल एज़ तव्हांखे लीगल कंसल्टेशन घुर्जे त शहबाज़ साहब जे तक़रीबन 10 खां 11 सालनि जे एक्सपीरियंस मां फ़ाइदो बि हासिलु करे सघो था ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांखे लीगल कंसल्टेशन मिलंदो।

0: थी, कोई भी रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन अचे थी पई कंहिंजे भी थ्रू उन पर्टिकुलर इंसिडेंट जे लाइ ऑफेंस जे लाइ, त पहिरीं ई रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस जी आहे टू राइट इट डाउन, उनखे लिखी करे इन्वेस्टिगेशन।
1: शेबा चलो एफ आई आर खां अलावा एनसी अगर कॉलर आया जी साईं कहिड़ो सवाल पुछणो आहे जी बलोच साहब?
2: सर मुझे सवाल एफ आई आर एंड एनसी
1: जी
2: वॉट इज
1: ॿुधाए चुका आहियूं बलोच साहब, तव्हां हींअर जॉइन कयो आहे,
0: मां ॿिए रिपीट करे एनसी वही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट द नेरेटिव ऑफ द पर्सन हु सॉ द इंसिडेंट हु केम टू द पुलिस स्टेशन एंड टोल्ड टू द पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन कंहिं बि कॉग्निज़ेबल कॉग्निज़ेबल ऑफेंस जो कॉग्निज़ेबल ऑफेंस हुनखे चइबो आहे जेको ॿुधण जोॻो हुजे, जिते विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट विदाउट वॉरंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट अ पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन दैट इज़ कॉल्ड एफआईआर। नॉन कॉग्निज़ेबल ऑफेंस जीअं फिर असां रिपीट कयोसीं अर्ली टाइम्स में शुरूआती टाइम में रिपीट कयोसीं त उहे ऑफेंसिस जेके लेस हीनियस हुजनि जिन जा माना जंहिंजी इंटेंसिटी तमामु घटि हुजे, सपोज धमकी वारा थी विया या मार कुट वारा थी विया, हल्का फुल्का डिस्प्यूट थी विया, इहे नॉन कॉग्निज़ेबल ऑफेंसिस आहिनि, इनखे चइबो आहे एनसी। सो इहो ई बिग डिफरेंस में जो थियबल ऑफेंस आहे त पुलिस इन्वेस्टिगेशन मोशन में थी अची वञे, एनसी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन मोशन में न ईंदी, उनखे राइटेड डाउन रखंदी ऐं उनजी जेकी हिकड़ी कॉपी आहे उहा जंहिं कटराई आहे हुनजी हैंड ओवर बि कंदी, हुनखे ॾियणी आहे, हुनखे रिसीविंग आहे उहा ॾियणी आहे हुनखे, ठीकु आहे। जीअं अगरि कल्ह को अगरि पुलिस को एक्शन नथी खणे त हुनखे त कुझु पंहिंजे हथ में हुजे न, त जेको अॻिते हली करे कंहिं डिस्ट्रिक्ट जज खे सॉरी डिस्ट्रिक्ट न सेशन जज खे अॻिते हली करे कुझु प्रूफ त ॾेखारे सघे सर असां एनसी कटराए चुका पर त को एक्शन न आहे, की पंहिंजे हाई ऑफिशियल एसएसपी वटि कंप्लेन करण जे टाइम ॾेखारे थो सघे न असां वटि साईं एनसी कटियल आहे पर हिन वक़्तु ताईं असांजो को हुन ते को एक्शन न थियो आहे। सो एनसी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे नॉन कॉग्निज़ेबल ऑफेंसिस, न ॿुधण जोगा, नॉन मींस न कॉग्निज़ेबल ॿुधण जोगा, न ॿुधण जोगा ऑफेंसिस खे एनसी चवंदो आहे। हा इन में पुलिस हिन खे रखंदी, नोट डाउन कंदी, राइट डाउन कंदी, इहा मैजिस्ट्रेट वटि सॼी सॼी कॉपी पेश थींदियूं, पोइ मैजिस्ट्रेट ई इजाज़त ॾींदो त इन्हनि जे मथो तव्हांखे पंहिंजो एफ आई आर कटणु खपे या हिन ते इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करणु खपे या जंहिं ॾोहु कयो आहे अक्यूज पर्सन छा हुनखे ॿधणु खपजे या न ॿधणु खपजे। देट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एफ आई आर एंड द नॉन कॉग्निज़ेबल ऑफेंसिस।
1: हिकिड़ी मुंहिंजे फ्रेंड जेको आहे एनसी कराई, हुनखे हिकु त कॉपी न ॾिनी वई, पोइ मूं थोरी हुनखे कॉपी वठराई,
0: मिली वई न कॉपी,
1: कॉपी मिली पर हुन जो कुझु थियो कोन,
0: एज़ आई सेड के रिसीविंग ॾियणी आहे।
1: इवन दो सर हुन एनसी खे तकरीबन जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त पोइ रखंदा आहिनि हुनजी मोटरसाइकिल खां पूरा वग़ैरह थी वई हुई, देन टे महीना थी विया पंध करे करे अंत चयो यार बसि ठीकु आहे, कॉपी बसि मां रिकॉर्ड में रखी।
0: बाबर असांजे एजुकेशन सिस्टम में लॉ खे मां चवंदो हाणे पंहिंजे लेवल ते जॾहिं खां मां वकालत खे जॉइन कयुमि मां हिन शइ जो हिकिड़ो फ्लॉ माना हिकिड़ो गैप फील कंदो आहे कि असांजे एजुकेशन डिपार्टमेंट में तालीमी डिपार्टमेंट में छोकी बिगनिंग त उहो ई आहे न, असांजे जनरल अवेयरनेस जे लाइ अहिड़ा नंढा नंढा प्रोग्राम्स भले चाहे हफ़्ते में हिकु दफ़ो हुजनि या महीने में ॿ दफ़ा हुजनि, अहिड़ा प्रोग्राम्स रखो जंहिंमें तव्हां जनरल पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कयो, जंहिंमें माण्हुनि खे पंहिंजे राइट्स जी प्रॉपर ख़बर हुजे, जंहिंमें ह्यूमन राइट्स जी ख़बर हुजे, पुलिस जे बारे में ख़बर हुजे, हरासमेंट जे बारे में ख़बर हुजे, चाइल्ड अब्यूज़ जे बारे में ख़बर हुजे। त हाणे असां इहो चवंदासीं त एजुकेशन डिपार्टमेंट खे बि लॉ जे बारे में कुझु न कुझु स्ट्रेटजी ठाहिणी पवंदी जे असांजे नौजवाननि खे असांजे पढ़ियल लिखियल नौजवाननि खे या असांजे यूनिवर्सिटी वारनि खे कॉलेज जे ॿारनि खे इन शइ जी प्रॉपर अवेयरनेस हुजे ऐं परेशान न थियनि ऐं असांजी आवाम जे लाइ बि अहिड़ा प्रोग्राम्स हुजनि जंहिंमें उन्हनि खे टोटल अवेयरनेस मिले त अगरि मूंसां कोई इशू थिए थो पियो त मुंहिंजो पहिरियों स्टेप छा हुजणु खपे। सो इहे कुझु सजेशन्स आहिनि जेके गवर्नमेंट खे खपे त इहे स्कूल लाइफ खां वठी करे यूनिवर्सिटी लाइफ ताईं इन्हनि खे जेको आहे न इंट्रोड्यूस करे छॾे, इवन ऑफिसिस में बि इन्हनि खे इंट्रोड्यूस करायो वञे त जीअं अगरि कंहिंसां कोई बि इशू थिए थो क्राइम सां रिलेटेड एफ आई आर सां रिलेटेड या कंहिं बि मामले सां त हुनखे पंहिंजो पूरो जो पूरो रस्तो मिलियल हुजे।
1: ठीकु आहे, सो शेबा साहब लास्ट में तव्हां पैगाम बि ॾेई चुका, सजेशन ॾेई चुका, ॿुधनि था पिया, तव्हांजी वॾी महिरबानी, थैंकफुल आहियूं। ॿी का शइ तव्हां सम्झो पिया एफ आई आर जे लाइ तव्हां असांजे सामान खे ॿुधाइण?
0: मां इहो ई चवंदुमि त अगरि तव्हांजे मथो एफ आई आर कटिजी वई आहे सभ खां पहिरियों डोंट नीड टू बी पैनिक, परेशान न थियो,
1: ठीकु आहे,
0: तव्हां पंहिंजे कंहिं बि हिकिड़े कंसर्न दोस्त खे कॉल कयो, अगरि दोस्त नाहे कंहिं बि वकील वटि वञो जेको बि तव्हांजी लोकेलिटी में हुजे, ऐं पुलिस छोकि एफ आई आर इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तव्हां पंहिंजे काउंसिल जे थ्रू या काउंसिल खे तव्हां मोकिले छॾो त उहो पंहिंजी जेको आहे न एफ आई आर कॉपी चाहे उहो पुलिस खां बि रिसीव करे

0: सघनि था जीअं कोर्ट में वई आहे उते बि को रिसीव करे उतो रिसीव करण खां पोइ पंहिंजे लाइ प्री अरेस्ट बेल दाख़िल कराए छॾनि त जीअं हुननि खे पुलिस खां प्रोटेक्शन मिले ऐं पंहिंजे केस खे डिफेंड करे सघनि। सो एफ आई आर ॿुधी करे पैनिक न थियो, असांजा अमूमन माण्हू पैनिक थी वेंदा
1: आहिनि।
0: अगरि जंहिंजी एफ आई आर नथी थिए त मां हिकिड़ो इहो ई सजेशन ॾींदुमि त तव्हां उन हद जे एस पी सां वटि कंप्लेन कयो ऐं उहा कंप्लेन जी रिसीविंग वठी करे तव्हां कोशिशि कयो त अगरि नथी थिए एफ आई आर नथी थिए कंप्लेन जी रिसीविंग वठी करे तव्हां कंहिं बि हद जे सेशन जज वटि वञी करे तव्हां पंहिंजी इन द फॉर्म ऑफ अंडर सेक्शन 22A ऐं 22B जे थ्रू तव्हां पंहिंजी लॉजमेंट ऑफ एफ आई आर दाख़िल कराए सघो था पिया कोर्ट में।
1: ठीक आहे शहबाज़ साहब, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: सो लिसनर्स, बिल्कुल प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जो वक़्त बि पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। शहबाज़ हफ़ीज़ साहब सां डिस्कस थी अबाउट द टॉपिक एफ आई आर। अवां जा कुझु सवाल, बल्कि इलाही सवाल रहिजी विया आहिनि स्क्रीन ते। काफ़ी सारा अवां जा व्हाट्सएप जा मैसेजिस आहिनि जेके मां ॾिसां पियो, पर माज़रत ख़्वाहियां टाइम जी कमी जी वजह सां शामिल कोन थो करे सघां। इवन अवां जी कॉल्स बि काफ़ी अचनि पियूं जेके उन्हनि खां बि माज़रत ख़्वाहियां। हा, अवां जो को सवाल हुजे, अवां खे का लीगल कंसल्टेशन घुर्जे, त अगरि शहबाज़ साहब पंहिंजो नंबर ॾियणु चाहिनि त साईं तव्हां अगरि ॾियणु चाहियो असांजे।
0: नंबर शेयर कंदो आहे, मूंखे कॉल्स बि ईंदा आहिनि। मां ॾिसो, मां तव्हांजे थ्रू हिकिड़ो मैसेज ॾियणु चाहियां थो। अगरि मां कुझु दोस्तनि जी कॉल न खणी सघंदो त मे बि शायदि मां किथे कोर्ट में बिज़ी हूंदुमि, पर मां 90% तव्हांजे कॉलर्स जी जेकी बि मूं ॾे ईंदा
1: आहिनि
0: मुंहिंजी कॉल खणंदो। अगरि मूंखे जेके रेगुलर ॿुधनि था पिया हुननि खे ख़बर हूंदी त मां हुनजी कॉल जो जवाबु ज़रूरु ॾींदो आहे। सो 0308124-3006।
1: All right.
0: Thank you.
1: So, listeners, बिल्कुल प्रोग्राम जो वक़्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। अगले प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख ऐं असांजे महिमान एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त। सदाई गॾु, अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर।

0: छा तवा भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाय ते ठाण चाहो था जिते हो जे तहफुस जदी सहूलतू आई मंजूर थियल सिक्योरिटी
1: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
0: सखर शिकारपुर रोड
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: GFM 91.6
4: अभी बुधो प्यार

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: आई
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

रात होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जी एफ एम बदलती लाइफ की

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: रोजाना रात 9 बजे सिर्फ पर
1: जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो।

0: रक्त से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो उतरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी FM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: मैक्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल,
3: उसी खिप
2: नेटवर्क।

0: संगीत जो आवाज
1: 1.6 जिस धरती से जुड़ा है कलंदर बाज
2: उसी खनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: एफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
1: ये
2: है जी एफएम सबसे हिट है
3: नेटवर्क सी

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: गीत संगीत जो आवाज़ प्यारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ उदंदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: नया ड्रामा सीरियल हम नवा जल्द 10 मिनट पर।
1: हक सच जो आवाज़ ये हैदराबाद 91 आवाज़ उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो आखिरी रस्म जारी, शहीद आयतुल्लाह जो मड़ तेहरान की मस्जिद में रखल, अवाम पारा अलविदा जो सिलसिलो जारी, शहीद रेबर के अलविदा चवण लाए हजारन की तादाद में शहरी तेहरान पहुंतल, बेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी, शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे नमाज सुभाणे अदा कई वेंदी, 1 करोड़ माण्हुनि जे शरीक थियण जो इम्कान, सूमर ॾींहुं चौराहे ते मशर ऐं मिटी मां हवाले कयो वेंदो। शहीद आयतुल्लाह खामनाई अज़ीम आलम ऐं अॻवाण हो, शहीद सदाई सबर ऐं सहब जो मुज़ाहिरो कयो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ आयतुल्लाह खामनाई खे बेटा पेश करे चयो आहे त शहीद आयतुल्लाह खे रुगो ईरानी न पर करोड़े मुसलमान खे अज़ीम अॻवाण तौरु यादि रखंदा। पाकिस्तान ऐं ईरान ॿाहिरि इस्लामी मुल्क आहिनि, हिक ॿिए सां हर हाल में गॾु रहंदा।
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice.
1: खामनाई जी आख़िरी रस्म लाइ ईरान खे हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान अमरीका सां ठाह करण लाइ बेताब रस्मनि लाइ ईरान खे हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। ईरान अमरीका सां ठाह करण लाइ बेताब आहे ऐं डील लाइ मरी रहियो आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीका ईरान जे अॻोणे सुप्रीम लीडर जे आख़िरी रस्मनि लाइ ॻाल्हियुनि खे रोकियो आहे। अमरीका वेनेज़ुएला खे 1 ॾींहं में शिकस्त ॾिनी, ईरान खे बि हारायो आहे। ईरान ॿीहर आबाद थियण चाहे थो। असां सुठा माण्हू आहियूं। ईरान खे अॻोणे सुप्रीम लीडर जी आख़िरी रस्म लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾिनी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी इस्तंबुल में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान सां मुलाक़ात, वितर्की सहकार खे वधीक हथी ॾियण ते तफ़ाक़। तुर्क सदर पारां ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तानी कोशिशनि जी साराह, सूरतहाल ते ॿिन्ही अॻवाणनि जो राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़। रजब तैयब अर्दोगान चयो त पाकिस्तान ऐं तुर्किया सदाई गॾु बीठल रहंदा। आलमी अमन लाइ इस्लामाबाद मुफ़ाहमत ते अमल ज़रूरी आहे। अमन तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ पाकिस्तान जा खयल क़दम वाखाण जोॻा आहिनि। शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान ऐं तुर्किया विच में लाॻापा वक़्तु गुज़रण सां गॾु वधीक मज़बूत थिया आहिनि। तुर्किया ऐं पाकिस्तान गॾियल तौर ते अवामी भलाई ऐं तरक़ी लाइ कम कंदा रहंदा। ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर पाकिस्तान में थींदो, अरब मीडिया जी दावा। अल अरबिया जी रिपोर्ट मूजिब ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो बियो दौर 11 जुलाई ते इस्लामाबाद में थींदो। ईरान ते लॻल पाबंदियुनि, एटमी प्रोग्राम ऐं मुंजमिद असासनि बाबति ॻाल्हियूं थींदियूं। ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम लीडर जी तदफ़ीन बाद थींदो। आपना हुर्मुस खिते जे ॿाहिरि वारनि कुवतनि लाइ फ़ौजी ताक़त ॾेखारण वारे मुज़ाहिरे जो हंधु नाहे। ईरान हिकु ज़िमेवार ताक़त ऐं आपना हुर्मुस जी सलामती जो ज़ामिन आहे। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर क़ासिम फरीबाबादी चयो आहे त आपना हुर्मुस में गैर मुल्की फ़ौजी कुवत खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। बहरान पैदा करण लाइ मुहिम जोई कंदड़नि खे नतीजा भोगणा पवंदा।
3: मैं नहीं कह रहा, लेकिन कराची को वफात के हवाले करें, नए इंतजामी यूनिट्स बनाए, सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। एहतजाजी तहरीक के कॉल देने का वक्त आ गया है और एमक्यूएम पाकिस्तान उसके लिए अवाम से रबते में है। अवाम कुछ ना कुछ अब करें, अब करने का वक्त है, नाउ और नेवर। मैं इसलिए कह रहा हूं, पर दूसरा हमारी गवर्नरशिप हमें वापस की जाए।
1: एमकेएम हिकु भेरो ॿीहर कराची खे इंतज़ामी यूनिट ठाहे वफ़ाक़ हवाले करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुतालबा तस्लीम न थियण ते रस्तनि ते अचण जी धमकी, सिंध जी गवर्नरशिप ॾियण जो बि मुतालबो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे एमकेएम जे फारूक सत्तार चयो त पीडीएम जे पहिरें हुकूमती दौर में थियल वाइदे ते अञा ताईं अमल नाहे थियो। ख़ुदमुख़्तार मकानी हुकूमत नाहे ठही, नई जाली डोमिसाइल वारा मसला हल थिया आहिनि। गवर्नर राज लॻण जो नथा रहो, रेफरेंडम करायो वञे, कराची खे वफ़ाक़ हवाले करण लाइ इंतज़ामी यूनिट ठाहियो वञे, असांजे रस्तनि ते अचण जो वक़्तु अची वियो आहे।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उस दिन मिलकर रहेगी।

0: देखिए इक्तदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 90 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: बर्बाद में लग गई मेरी खुशियों को।
1: ये FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: रण ते भी तफाक जब तक अर्दगान चयो तो पाकिस्तान ए तुर्किया सदाई गड बीठल रहंदा। आलमी अमन लाए इस्लामाबाद मफाम ते अमल जरूरी आहे। अमन तरक्की ऐं खुशहाली वाले कदम वाकण जोगा आहिनि। चयो त पाकिस्तान ऐं तुर्किया विच में लागापा वॾे अवामी भलाई ऐं तरक्की लाइ कम कंदा
3: रहंदा। اعلام میکنی
2: ایران جے شہید سپری پاملائی جو آخری رسم جاری شہید آیت اللہ جو مڑ تہران جی مر جون لائے ہزاریں جی تعداد داری شہید آئی جی جنازے نماز سبانے اجتماع تھی دو مڑ دو دن دو अल अरबिया जी रिपोर्ट मौजिब ही थी पाबंदी ज़ाहिर जो हंदान जे भरपूर जवाब डिनोना पवंदा।
4: वफात के हवाले कर सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। एहतजाजी तहरीक के कॉल देने का वक्त आ गया है और MQM पाकिस्तान उसके लिए अवाम से राबते में है। दूसरा हमारी गवर्नरशिप हमें
2: MQM एक भेरो बीहर कराची के इंसामी यूनिट आहे वफाक हवाले करण जो मुतालबो पाकिस्तान ते अचण शिप ॾियण जो भी मुतालबो PDA में थियल माहिदे ते अञा ताईं अमल वारा मसला हल थिया आहिनि। गवर्नर राज हवाले करण लाइ इंसामी यूनिट ठाहियो वञे असांजे लाइ जो वक़्तु अची वियो आहे। अवाम सां राब्ते में आहियूं। वफ़ाक खे मुदाख़लत करणी आहे त हाणे करे पोइ मुदाख़लत न करे।
1: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: अभी बुधो प्या बात
6: पिताई पिता
5: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।